पता वापस दोबारा दिल खुश करें मैं फैसमा मत बलूचा उसे हाय नाज उसने वाला दिल मनी बोखताला ए रागे नामी जो